0: कर जाहि निरासे केत फल फिके फुल बक बके कामना में पत मिटतनी वि नानक गुण चंगिया या तत सब को नेवे आपको पर को नेवे ना को ए तन तारा जु तो लिए नेवे सो गोरा होए प्रति दुना नेवे जो अंत मेरे का शीश नेवाए क्या थी है जारी देख सुते जाहे महला पहला
1: पढ़ पुस्तक संध्या वादन शिल पूज सुभगुल समादन

0: सलाम जवाब दोवें करे मुंडों कुथा जाए, नानक दोवें कुड़ियां थाए ना काई पाए, पौड़ी जित सेवे सुख पाइए,
1: पौड़ी जित सेवे सुख पाइए, सु साहिब सदा संभालिए, जित कीता पाइए अपना सकाल बुरी क्यों घालिए, मंदा मूल की चाहिए दिल में नजर निहालिए, जो साहिब नाल हारी तिवे हा पासा ढालिए, किसला है ऊपर घालिए, किसला है ऊपर घालिए,
0: जिन गुरमुख नाम

ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद चक्र चिहन अर बरन जात अर पात नहिं जेहे रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत केहे अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितोज कहिजै कोट इंद्र इंद्रान साह साहन गणिजै त्रिभुवन महीप सुर नर असुर नीत नीत बन त्रिन कहत तह सर्वनाम कथय कवन कर्म नाम वर्णत सुमत अब रखह दास पाठ की लाज जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की हर नाख सफारे कर आज फुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी छीनत वस्त्र दीन बहु साज सो दामा अपदाते राखिया गन का पढ़त पूरे तेह काज श्री सतगुर सुप्रसन्न कल युग होए रखो दास पाठ की लाज तन जियो तेह को जग में मुख ते

ज्ञान की बढ़नी मनो हाथ न कतुरता कुतवार बुहार। ज्ञान की बढ़नी मनो हाथ न कतुरता कुतवार बुहार। सुख टल गुर सेविया अहनिस सहज सुपाई, दर्शन परसया गुरु का जन्म मरण दुख जाए। होवे सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों चटिया, डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह दशाह, जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावी साह। सज्जन सच्चा पातशाह सिरशाह दशाह, जिस पास बैठिया सो

सच्चे पावहि। अहंकार हो मैं तज माया, सहज नाम समावहि। आप कर्ता करि सोई, आप देव

कदे न विसारी अनदिन सुमारी। जो नाम नहीं ता जीवा, श्रवणी सुनी ता यह मन तृप्ता। गुरमुख अमृत पीवा, नजर करे ता सतगुर मिले। अनदिन विवेक बुद्ध विचरा,

अंत गया पछतावे, बिन नावे को साथ न चाले, पुत्र कलत्र माया तोहिया, दूजा पाई दुख हो मन मुखी

प्रभ मन पाया जियो, प्रभ मन पावे ता हुक्म सुनावे, हुक्म मन सुख पाया। अनदिन जपत रहे दिन राती, सहजी नाम त्याया। नमो नाम मिली वड़ियाई, नानक नाम मन पावई।

माता तरत महत दिवस रात दुए दाई दाया खेले सगल जगत चंगे आईया बुरे आईया वाचे धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिनी ना

गए मशक्त काल नानक ते मुख उजले केती छुटी नाल। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

0: पौड़ी बढ़े बढ़ाया पार तेरा मर्तबा, रंग परंग नेक ना जपन करतबा, जी अंदर जियो सब कुछ जान ला, सब कुछ तेरे वस तेरा कर पला, तेरे कर नंद वधाई दुद कर, मान महत्ता तेज अपना आप जर, सर्व कला भरपूर दिसे जत कता, नानक दास दास तुद अगे बिन बता।
1: श्लोक पवन गुरु पाणी पिता, माता धरत महत दिवस रात, दोए दाई दाया खेलै सगल जगत, चंगियाईयां बुरियां।

बानी गुरु, गुरु है बानी, विच बानी अमृत सारे, गुरबानी कह सेवक जन माने। पर तक गुरु निस्तारे, अंदर सच्चा ने हो लाया प्रीत में अपने, तन मन हुए निहाल, जागुर देखा सामने।

गए मशक्कत का नानक ते मुखी जले के ती छुट्टी नाल। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

आया गए मशक्कत का नानक ते मुख उजले केती छुट्टी ना जिनी नाम ते आया गए मशक्कत का नानक ते मुख उजले केती छुट्टी ना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

0: जपना आप जर सर्ब कला भरपूर दिसे जत कथा नानक दासन दास तुदे आगे बिनवता सलोक
1: पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपाई, हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूरन होय चित की इच्छा। तब चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। हमरे दुष्ट सब तुम कावहो, आप हाथ दै मोहे बचावहो। सुखी बसै मोरो परवारा, सेवक सिख सब करतारा। मोर अच्छा निज कर दै करिय, सब बैरन को आज संगरी है। पूरन होय हमारी आसा, तोरे भजन की रह प्यासा। तुम है शाड कोई अवर न त्याऊ, जो बर चाहो सो तुम ते पाऊ। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे उबरी है, मरण काल का त्रास निवरी है। हुजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुज जू करी अहो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहेब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बप तरा, काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जशन उपजायो। आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझिया हो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सिवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह बद कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, काट काट के पाट पाट की जाने। जब उदकरख करा करतारा, प्रजा तरत तब देह अपारा। जब आकरख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब तारे, आप अपनी बूझ उचारे। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आदि अनिल अनादि असंभ। ताका मूढ़ उचारत भेदा, जाको पीव न पावत बेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूढ़ कश भेद न जानत। महादेव को कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत पिन पिन तोहे तेती। तुमरा लखा न जाय पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप सरूपा, रंक पयो राव कही पूपा। अंडज जेरज सेतज कीनी, उत पुज खान बहोरे रच दीनी।
कहूँ फूल राजा हुए बैठा, कहूँ सिमट पयो शंकर इकैठा। सिगरी सृष्टि दिखाई अचंपव, आदि जुगादि स्वरूप स्वयं भव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरहो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुज तव सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित होय मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्यै है, ताकि काल निकट नह है। रक्षा होय ताहि सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहि निहर हो, ताकि ताप तनक मह हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह श्वै सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास ते ताहि उबारा। जिन नार नाम तिहारो कहा, दारिद्र

सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सब बहुभेद कह हम एक न जान्यो श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं न कहियो सब तो हे बखान्यो दोहरा सग

बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजी अनहद तूरे। सुनते पुनीत कहते पवित्र

हर गोबिंद नौ सिमरौ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठै सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै कर नौ निध आवै ताए सब थाई हुए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय। दसां पात

कौन को कलंक रहयो राम नाम लेत ही, पतित पवित भए राम कहत ही। राम संग नाम देव जन कौ प्रतज्ञा आई, एकादशी व्रत रहै काहे कौ तीर्थ जाई। पनत नाम देव सुकृत सुमत पहि, गुरमत राम कह को न बैकुंठ गए। हर के भजन कौन कौन न तारी, खाग तान मीन तान मृग तान ब्राह तान, साधु संग उदारी रहाओ। देव कोल दैत कोल जाख किन्नर नर, सागर उतरे पारी। जो जो भजन करै साधु संग, तिन के दुख निवारी। काम क्रोध महा बिखिया रस, इनते भये निरारी।

गोरमुख पंथ गहे जामपुर पंथ मेटे, गुरसिख संग पंच दूत संग त्यागे है, चरण शरण गुर करम परम खोई, दर्श अकाल काल कंटक पै भागे है, गुर उपदेश वेस बजर कपाट खुले, शबद सुरत मूर्छत मन जागे है, किंचत कटाश कृपा सर्ब निदान पाई, जीवन मुकत गुर ज्ञान लेव लागे है, किंचत कटाश कृपा सर्ब निदान पाई, जीवन मुकत गुर

अहनिस सहज सुभाय, दर्शन परसिया गुरु कै, जन्म मरण दुख जाय। होवै सिफत खसम दी, नूर अर सह कुर सह चटिया, तुद डिठे सच्चे पातशाह। मल

इन मैं कछ नाहि तेरो, काल अवध आई, अजामल गाज गनिका, पतित कर्म कीने, तेऊ उत्तर पार परे।

गुर की टेक रहो दिन रात, जा की कोई ना मिटे दात। गुर परमेश्वर एको जान जो

हम अवगुण परे एक गुण नाही। अमृत षाड बिखै बिख खाई, माया मोह परम पै भूले। सतदारा स्यों प्रीत लगाई, इक उत्तम पंथ सुन्यो गुर संगत। तेह मिलंत जम त्रास मिटाई, इक अरदास पाठ कीरत की। गुरु रामदास राख शरणाई, इक अरदास पाठ कीरत की। गुरु रामदास राख शरणाई, सुख टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुपाय। दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाय। होवै सिफत खसम दी, नूर अरसों कुरसों चटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटी है। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर शाह दशाह। जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दावी साह। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर शाह दशाह। जिस पास बैठिया सो

राम नाम सिमरन बिना बूढ़ते अधकाई रहा बनिता सुत देह गृह संपत सुखदाई इनमें काश नाही।

राम नाम छाड़ अमृत, काहे बिख खाई, ताज परम कर्म बिद निखेद। राम नाम लेहि गुर प्रसाद जान कबीर।

संत जना मिल हर जस गायो, हाँ कोट जन्म के दुख गवायो, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो।

तरत महत दिवस रात दुई दई दया खिले सगल जगत चंगियाईया बुरियाईया वाचे धर्म दूर करमी आपो अपने के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया गए मसकत का नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल जिनी नाम ते आया गए मशक्त कार नानक ते मुख उजले केती छुट्टी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

0: लोक महला पहला सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सिर विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चा तो दया कहला करोड़ सच्चा सब दान सच्चा सब जो सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच ध्यान सच जो मर जमै सुटा चने कच महला
1: वडी वड्याई जा वडा नाम वडी वड्याई जा सच न्याओ वडी वड्याई जाने चल थाओ वडी वड्याई जाने आलाओ वडी वड्याई बुझे सब पाओ वडी वड्याई जा पुछना दात वडी वड्याई जा पे आप नानक कारना कथनी जाए कीता करना सर्व रजाए महला दूजा
0: सच्चा

जोहरी स्वस्थ दिस दिस दीवाने पग नानक सच्चा नाम बिन क्या टिका क्या तग महला पहला।

बनासी हर खवन अनंत रूप निर्मल बेगासी गुण गावे बे अंत अंत एक तिल नहीं पासी जाको हो हे कृपाल सो जन प्रभु तुम्हें मिलासी तन तन ते तन जन जय कृपाल हर हर प्यो हर गुरु नानक जिन परस्यो से जन्म मरण दो थेरे हो तन तन ते तन जन तन तन ते तन जन

कवन वेद उस्तत करिय, सिद्ध साधिक ते तीस कोर तिर की मना परिय। ब्रह्मादिक सनकाद सेख गुण अंत न पाए, अगहों गहयो नहीं जाए पूर श्रब

ब्रह्मादिक शिव शांत मुनि सर रसक रसक ठाकुर गुण गावत इंद्र मुनिंद्र खोजते गोरख तरन गगन आवत फुन तावत सिद्ध मनोख देव दानव इक तिल ताको मर्म न पावत प्रया प्रभ प्रीत प्रेम रस भक्ति हर जन ताके दर्श समावत तिसे त्याग आन को जाच है मुख दंत रसन सगल कास जावत।

0: सतजुग्रसंतोका धर्मगैरथवाहो त्रेतरत जतका जोर गैरथवाहो द्वापरत तपका सतगैरथवाहो कलजुग्रथगनका कूड़ गैरथवाहो महला पहला।
1: साम कहे सितंबर स्वामी सच में अच्छे साथ रहे सबको सत समावेर कहे रहे अप्रभु राम नाम देवा मैं सुर नाय लगे प्रश जाहे नान को मुखंत्र पाहे जुज मैं जोर छली चंद्रावल कान।